बढ़नाले ये तीखेरा दुख पर बिदे न पढ़नाले मोमा स्वर्गे मुनु भयो म 5 वर्ष को हुँदा बालखमा पढ़ना पाइन 7.5 ले छुँदा

ती बेला मैचन की गर्दयोलिन पीढ़ीमा बसेर के कुरा गर्दियो कहिले।